0: Radio.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
5: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
6: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

0: Breaker Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
6: Leica Radio.
0: Easing you through the night with London's biggest hits.

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वडियाई।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख

जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के

0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
1: देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
0: डेजर्ट सफारी,
1: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
0: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
1: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साफो ट्रैवल, ऑटो प्रोटेक्टेड। लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
3: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
2: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
3: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
2: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
3: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
2: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk।
3: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।
4: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
5: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
4: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: Royal Chai laaye hain, smart solution for your business.
9: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
8: Rich, authentic taste every single time.
9: Royal Chai, brewed for business.
8: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
10: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
11: आपका नया स्टेशन Leica Radio Ghazals बहुत जल्द आ रहा है।
12: Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.
13: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That's a Malabar promise.

0: रास्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
3: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए।
4: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
2: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
5: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है।
2: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
2: Releasing nationwide by Zee Studios.

0: Master Panipuri or Panipuri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
3: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी.
4: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल.
3: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में.
4: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल.
3: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 0794756194.
4: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208907016.
3: दिवाली का जश्न अपनों के संग.
5: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है.
6: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार.
7: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
7: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
9: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. Wake up, feel good. It's Donny Brasco on Breakfast.
10: Like a radio.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
2: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है चूकिए नहीं विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल
3: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: सबसे निराला मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All मैमस्टर products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है. अल नूर टेस्ट द डिफरेंस.
3: मॉम हैव यू बॉट सम ऑफ दोस डिलीशियस नूडल्स?
4: यू मीन कोका द किंग ऑफ नूडल्स. कोका मींस डिलीशियस. वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स अवेलेबल इन कोका पैकेट कोका कप एंड कोका बोल नूडल्स. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Coca noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
5: Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.

0: SATCO food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, SATCO food containers.
0: The perfect food storage solution, SATCO food containers.
2: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
3: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
2: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
3: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
2: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
3: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
2: टिकट बुक करो SegaLondon.co.uk।
3: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा। We'll be right back.

0: 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
1: Cow's Choice Pure Ghee, har chamach mein shudh desi swaad.
2: लंडन हलो गरबे गुमवा श्री 27 गाम पाटीदार समाज यूरोप साथे मानो नवरात्रि भारत ना लाइव बैंड साथे 10 थी 20 अक्टूबर सांजे 7:30 थी एट 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली एडल्ट टिकट्स £10 16-17 ने 18 अक्टूबर 15 पाउंड्स 5 थी 10 वर्ष ना बाड़को ने 5 पाउंड्स अंडर 5 फ्री 11 रात नो सीजन पास 100 पाउंड्स रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क 27 गाम पाटीदार समाज ना गरबा इटले बेस्ट Best.
3: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
4: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
7: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
9: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
10: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival Unspoken featuring short films feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th
11: Hi everyone, this is Aridha Khan from the Saturday Breakfast Show, where I'll be keeping you warm, fuzzy and cozy every single Saturday from 7 all the way till 10 a.m. Remember,
10: The Breakfast Blend. Perfectly brewed by you. Donny Brasco on Leica Radio.
12: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That's a Malabar promise.

0: आ गए आ गए रोनी भाई
1: आ गया
0: आ गया
1: क्या गया
0: सुनिए
1: और गाना मैंने मैंने सोचा कुछ और आ गया यार अल्ताफ भाई उधर है

0: तुम
1: अल्ताफ भाई फ्लैटिंग सुबह सुबह
0: रहते हैं हम।
1: ओए ओए ओए ये आशिक कौन आ गया यार? बाबर हाशमी
0: खोए खोए गुलसम क्योंकि आँखों में तुम।

0: ते गोल गप्पियां दा पानी।
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
3: Across London, this is Leica Radio.

0: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
1: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम।
0: इट्स अंताक्षरी टाइम विद

0: You know, all you need is your own permission. That's all you need. Just remember that. But I do have to take your permission to love you and leave you. We've got Rubina Khan coming up next in Manchester, Bali Brahmabhat on Like a Gold, and Vish Bhatnagar coming up next to reload your afternoon. It's me, Kush, signing out.
1: Kush on the Mid-Morning Show. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. London, are you ready? Raghavan presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: Okay. हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज रेमिनेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ, कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
4: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.

0: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
1: तेरा क्या होगा रे कालिया?
2: सरदार, मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
1: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
3: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
4: पूनम स्वीट सेंटर, 86 वेस्टर्न रोड, साउथ हॉल। कॉल 02085744934। डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर।
0: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट्जरलैंड विद मंत्रा हॉलीडेज सीनिक स्विस टूर, फ्रॉम द स्टनिंग स्विस आल्प्स टू इंटरलाकन, लुसर्न, माउंट टिटलस एंड मोर। एंड दिस अक्टूबर हाफ टर्म वी've गॉट आवर लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर। कॉल 02037736333 और विजिट mantraholidays.co.uk।
5: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
6: Next, Reload with Fishbert Naga.
7: Leica Radio, London.
6: Ye hai Leica Radio.

0: Umbrella, radio partner like a radio.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
2: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
2: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
2: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
2: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल, all protected.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
2: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
4: पत्थर बना दिया मुझे रोने नहीं दिया.
5: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
6: विश्व नागा ऑन लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन.

0: Powerful Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Atoll Protected.
3: London, are you ready? Raghavan presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: 073-00-99-8823. नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07

0: Janan. For 15 years, Janan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Janan. For you, for us and for everyone. The Janan and J. Anniversary Sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk.
1: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
3: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
4: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
6: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
7: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
8: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a

0: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting. Danube 11. Danube Properties.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
2: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 773 633 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज What's your travel mantra?
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410 दैट्स 0208574 8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
4: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी
5: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल
4: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में
5: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल
4: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 0794756147
5: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208907016
4: दिवाली का जश्न अपनों के संग
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: London, are you ready? As Surinderella is coming to you for autumn 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Catch it at the Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Desi panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Leica Radio.
8: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
9: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
10: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
11: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
10: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
11: Rich, authentic taste every single time.
10: Royal Chai, brewed for business.
11: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
12: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
13: Next, Raj Batten is up next with Drive Time.
14: On Leica Radio.
13: London. 90s throwback plays now.
14: Leica.

0: जिंदगी वहां सेट हो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: लंदन आर यू रेडी? राघवेंद्र प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड उदित नारायण एंड सन आदित्य नारायण परफॉर्मिंग लाइव विद बड़े मियां छोटे मियां दिस दिसंबर।
2: दिल ने ये कहा है दिल से बोले चूड़ियां।
1: वन डेट वन शो संडे द 20th ऑफ दिसंबर एट द ओवो अरेना वेम्बली लंदन। Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666. इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
4: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में
3: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
4: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में यूके में पहली बार
3: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन
4: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
3: शाम 7 बजे डोर्स ओपन
4: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02084260678

0: visit starters.co.uk or call
1: 208-900-2323. मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
2: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट Pickles Heat. Yeh hai Jaimin Foods ka vibe check.
3: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
2: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
4: A Leica Radio Classic. Plays now.

0: Mabster no panipuri ane panipuri no pani.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: लाइक अ रेडियो
4: पे क्लोज अटेंशन एंड नेम द फिल्म ऑफ दिस क्रैकर क्लासिक

0: अता फतेह अली खान विद शिरा घोषाल की आवाज आंखों में नींद है लेकिन फिलहाल अभी आंखों में नींद नहीं लानी है अभी तो पार्टी शुरू हुई है यारो पूजा लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव गोइंग आउट टू यू एज़ वेल थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज सुमिलिया थैंक यू फॉर योर लवली मैसेज एंड श्याम थैंक यू टू यू एज़ वेल द लव इज जस्ट लविंग टुनाइट
1: With Radio Wally's roller coaster, only on Leica Radio.
0: Hello, True Radio Wally style. Before we head over to see what's happening around that globe, squeezing one last big track, Bum Bum Bully.

0: lovely track, but time now.
1: The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s.
0: Just squeezing one last big track because we need to go into exactly what is happening around the globe. And we're going to end the roller coaster on a bit of a high. विनोद राठौर साधना सरगम की आवाज के साथ कहते हैं कि आशिकी में हद से गुजर जाने को जी चाहे आज आपके दिल में उतर जाने को जी चाहे भाई यू नो वो कहने की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है मैं ऑलरेडी आपके दिल में घर कर चुकी हूं और आप हमारे घर में तो चलो वॉल्यूम अप एंजॉय दिस वन और मिलते हैं न्यूज़ के बाद

0: London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danube 11-11, Danube Properties.
1: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी.
2: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल.
1: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रोहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में.
2: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट. पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल.
1: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947.
2: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116.
1: दिवाली का जश्न अपनों के संग.
0: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Next, the biggest romantic songs are up next on Love Sound. Laika. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Cutthroat Kirk Kilari every Saturday and Sunday at 7:30 PM on Colours, and watch it anytime on Jio Hotstar.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: Budget tight, पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
3: This